0: अभी आप भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में श्यामा संगीत सुन रहे थे। कलाकार थे अमियांशु मुखोपाध्याय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू श्यामा संगीत। आवर आर्टिस्ट वॉज अमियांशु मुखर्जी। दिस प्रोग्राम वॉज अर्लियर रिकॉर्डेड एंड प्रोड्यूस्ड इन द स्टूडियोज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता फॉर रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग अहीर भैरव में ख्याल गायन. आज के कलाकार हैं मोहनलाल मिश्र. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं समीर नंदी और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रथींद्रनाथ चक्रवर्ती. तो आइए सुनते हैं राग अहीर भैरव में ख्याल गायन, कलाकार मोहनलाल मिश्र.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी फर्स्ट प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल रेंडिशन. लिसन टू अ ख्याल इन राग अहीर भैरव. आवर आर्टिस्ट दिस मॉर्निंग मोहनलाल मिश्र. Accompanying on the tabla, Samir Nandi, and on the harmonium, Rathindranath Chakraborty. Now, listen to a khayal in Raag Ahir Bhairab by our artist Mohanlal Mishra.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहीर भैरव में ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थे मोहनलाल मिश्र। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे समीर नंदी और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रथींद्रनाथ चक्रवर्ती। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं राग परमेश्वरी में गिटार वादन। आज के कलाकार हैं देवोतोष्टे। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय। तो लीजिए प्रस्तुत है राग परमेश्वरी में गिटार वादन, कलाकार देवोतोष्टे।
1: You are listening to Khayal in Raag Ahir Bhairab by our artist Mohanlal Mishra. Accompanying on the tabla, Samir Nandi, and on the harmonium, Rathindranath Chakraborty. This is Raagam, 24/7 on DTH

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग परमेश्वरी में गिटार वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे देवतोष डे। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 2400 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You are listening to a guitar recital in Rag Parameshwari by our artist Devatosh De, accompanying on the tabla Tarun Roy. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam, 24/7 anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, आपने ट्यून किया है रेडियो चैनल रागम 2400 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. आप सभी का कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं. सुनते हैं मिश्र वाद्य संगीत. मिश्र वाद्य संगीत के इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं पंडित राम नारायण के सारंगी वादन से. आपने प्रस्तुत किया है राग मारुबिहाग, विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है. सुनते हैं पंडित राम नारायण का सारंगी पर बजाया हुआ राग मारुबिहाग.

श्रोताओं, हम सुन रहे थे पंडित रामनारायण का सारंगी वादन, राग था मारू बिहाग। मिश्र वाद्य संगीत का ये कार्यक्रम जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं पंडित उल्लास बापट का संवादन, राग रागेश्री। विलंबित गत जप ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। सुनते हैं पंडित उल्लास बापट का संतूर वादन, राग रागेश्री।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे पंडित उल्लास बापट का संतूर पर बजाया हुआ राग रागेश्वरी। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम 24/7 चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग नटभैरव में आलाप जोड़ और झाला. विलंबित और द्रुतगत तीन तालमनिबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है हसीन अहमद खान ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ सितार रिसाइटल बाय सुनीरा कासलीवाल. शी इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय हसीन अहमद खान. यू विल फर्स्ट लिसन टू राग नटभैरव in which you will hear alap, jod and jhala, followed by vilambit and drutgat set to teen tal.

0: अभी आप सुन रहे थे सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग नट भैरव। तबले पर आपकी संगति की थी हसन अहमद खान ने। और लीजिए अब सुनिए राग शुद्ध सारंग में आलाप। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है हसीन अहमद खान ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग नट भैरव सुनीरा कासलीवाल। नेक्स्ट प्रेजेंट्स राग शुद्ध सारंग in which you will hear the alap followed by vilambit and drutgat set to teen taal.

0: अभी आप सुन रहे थे सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग। तबले पर आपकी संगत की थी हसीन अहमद खान ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग शुद्ध सारंग वी कम टू द एंड ऑफ द सितार रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय सुनीरा कासलीवाल। शी वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय हसीन अहमद खान। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

Mari baba magari.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, आपने ट्यून किया है रेडियो चैनल रागम 2400 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. सभी का कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं. सुनते हैं मिश्रवाद्य संगीत. मिश्रवाद्य संगीत के इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं सरोद वादन से. कलाकार है अली सुलाखे. अबोली सुलाखे सरोद पर प्रस्तुत कर रही है राग अहिर भैरव. आलाप जोड़ तथा मध्यलय और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है. आपके साथ पेपर संगत कर रहे हैं गणेश तानवड़े. सुनते हैं अबोली सुलाखे का सरोद पर बजाया हुआ राग अहिर भैरव.

श्रोताओं, हम सुन रहे थे अबोली सुलाहे का सरोध वादन, राग था अहिर भैरव। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गणेश तानवड़े। शास्त्रीय वाद्य संगीत का ये कार्यक्रम जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं तार वादन, कलाकार है संध्या आपटे। संध्या आपटे सितार पर प्रस्तुत कर रही है राग मियां की तोड़ी, विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है प्रशांत पाठक। सुनते हैं संध्या आपटे का सितार पर बजाया हुआ राग मियां की तोड़ी।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे संध्या अपने सितार वादन राग था मियां की तोड़ी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांत फाटक। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग मारू बिहाग में ख्याल गायन. आज के कलाकार हैं गोपा सान्या.

0: न्याल आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं प्रद्युत पाल और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं देवाशीष अधिकारी। तो आइए सुनते हैं राग मारू बिहाग में ख्याल गायन, कलाकार गोपासा न्याल।
1: दिस इज रागम 24/7 एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। दिस इवनिंग वी फर्स्ट प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल रेंडिशन। Listen to a khayal in Rag Maru Bihag. Our artist this evening, Gopa Sanyal. Accompanying on the tabla, Pradyut Pal, and on the harmonium, Devashish Adhikari. Now, listen to a khayal in Rag Maru Bihag by Gopa Sanyal.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग मारू बिहाग में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज की कलाकार थी गोपा सान्याल। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रद्युत पाल और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं देवाशीष अधिकारी। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं राग जोग में ख्याल गायन। कलाकार सुरजीत चट्टोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष चौधरी और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं अमिताभ भट्टाचार्य। तो आइए सुनते हैं राग जोग में ख्याल। कलाकार सुरजीत चट्टोपाध्याय।
1: एवल लिसनिंग टू अ ख्याल इन राग मारू बेहाग बाय गोपा सान्याल एकम्पानिंग ऑन द तबला प्रद्युत पाल एंड ऑन द हारमोनियम देवाशीष अधिकारी। दिस इज रागम 24/7 एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। Continuing the concert, we now present a khayal in Raag Jog. Our next artist, Surajit Chatterjee. Accompanying on the tabla, Devashish Chaudhary, and on the harmonium, Amitabha Bhattacharya. Now, listen to a khayal in Raag Jog by Surajit Chatterjee.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग जोग में ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थे सुरजी चट्टोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवाशीष चौधरी और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू ख्याल इन राग जोग बाय सूरजीत चैटर्जी, एकम्पानिंग ऑन द तबला देवाशीष चौधरी एंड ऑन द हारमोनियम अमिताभ भट्टाचार्य। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड एंड प्रोड्यूस्ड इन द स्टूडियोज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता फॉर रागम 24/7 एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप

सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में उपशास्त्रीय गायन। कलाकार हैं नैना देवी। आप सुनेंगे दादरा, बोल हैं गोरी बनके नैनों से चला जादुआ। संगत कलाकार हैं तबले पर इस्माइल दद्दू खां और सारंगी पर सरदार खां। ये रिकॉर्डिंग वर्ष 1980 में की गई थी। दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल। नाउ लिसन टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय नैना देवी। द रेंडिशन कमेंसेस विद अ दादरा। द अकॉम्पनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला एंड सरदार खां ऑन द सारंगी। दिस वॉज रिकॉर्डेड इन द ईयर 1980.

अब आप सुनेंगे दादरा मिश्र गारा, बोल हैं सुध बिसरत नाही। नाउ लिसन टू अ दादरा मिश्र गारा।

आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी उपशास्त्रीय गायन, कलाकार हैं नैना देवी। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय नैना देवी। ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे ठुमरी भैरवी, बोल हैं हंस हंस गरबा लगाए। नो द आर्टिस्ट रेंडर्स ठुमरी भैरवी।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी उपशास्त्रीय गायन, कलाकार थी नैना देवी, संगत कलाकार थे तबले पर इस्माइल दद्दू खां और सारंगी पर सरदार खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल इंद्र की भेंट।

ಅಭಗರಿ ಧರಿಗ ಬಾಬಾನು ಕೊಡಿ ಅಭಗರಿ ಧರಿಗ ಬಾಬಾನು

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत. आज प्रस्तुत है तबला एकल वादन. वादक कलाकार है मुन्ने खां. सबसे पहले आप तीन ताल प्रस्तुत करेंगे. आपके साथ सारंगी पर लहरा दे रहे हैं जय शंकर.

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे मुन्ने खां का बजाया तबले पर एक ताल। आइए अब सुनते हैं उस्ताद अली अकबर खां का बजाया सरोद पर राग चंद्र नंद। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं चतुर लाल। सबसे पहले आप आलाप जोड़ झाला प्रस्तुत करेंगे, तत्पश्चात विलंबित बंदिश जो कि तीन ताल में प्रस्तुत करेंगे।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अली अकबर खां का बजाया सरोद पर राग चंद्र नंद। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है सतीश प्रकाश कमर का शहनाई पर बजाया राग भैरव. विलंबित गत तीन ताल में और मध्य लयगत झप ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद फैयाज खाने.
2: This is the Ragam Channel of All India Radio. We now present a Shehnai recital by Satish Prakash Kamar in Rag Bhairav. The Vilambit Gat is said to Teen Tal and Madhyale Gat is said to Jhap Tal. He is accompanied by Ustad Fayyaz Khan on Tabla.

0: अभी आप सतीश प्रकाश कमर का शहनाई पर बजाया राग भैरव सुन रही थी। और लीजिए अब सुनिए राग मदमात सारंग। मध्यलय और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद फैयाज खाने।
1: यू आर लिसनिंग टू अ शहनाई रिसाइटल इन राग भैरव बाय सतीश प्रकाश कमर। नाउ लिसन टू राग मदमात सारंग। द मध्यलय गत एंड द्रुतगत इज सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप सतीश प्रकाश कमर का शहनाई पर बजाया राग मधमाद सारंग सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी उस्ताद फैयाज खाने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिसनिंग टू अ शहनाई रिसाइटल इन राग मधमाद सारंग। ही वाज अकंपनीड बाय उस्ताद फैयाज खान ऑन तबला। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हर पल हर दिन भारतीय संगीत, यह है रागम DTH चैनल। प्रस्तुत है भक्ति संगीत, और आइए आप सुने एक भजन वाणी जयराम की आवाज में, मेरे तो गिरधर गोपाल।